श्री गिरीश ने गाई संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत चोखामळा की, जिसे गाया है जयश्री कुलकर्णी ने।

जय श्री कुलकर्णी ने गाई संत चोखामेळा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थट्टे के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मारू बिहाग और राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं यज्ञ सेनी मजूमदार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बाबू वर्धन. यज्ञ सेनी मजूमदार अपने गायन का आरंभ राग मारू बिहाग में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल. कलाकार यज्ञ सेनी मजूमदार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in the rag Maru Behag. Our artist this evening is Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar and on the harmonium is Babu Bardhan. Listen now to Khayal in the rag Maru Behag, our artist, Yagnaseni Mazumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी यज्ञसेनी मजूमदार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे बाबू वर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज यज्ञसेनी मजूमदार। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम वाज बाबू वर्धन। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन. प्रस्तुत है ठुमरी, बोल बलमा ने चुराई निंदिया. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक We now present light classical vocal recital by Vidushi Anita Sen. She presents Thumri. Bol, Balma ne churai nindiya.

ये थी ठुमरी। विदुषी अनिता सेन अब प्रस्तुत करती है दादरा, बोल आज मैं लड़ूंगी गुइया। दैट वॉज ठुमरी। विदुषी अनिता सेन नाउ प्रेजेंट्स दादरा, बोल आज मैं लड़ूंगी गुइया।

रहे थे उस्ताद हिदायत खान और सारंगी पर संगति कर रहे थे लियाकत अली खान। अपना गायन जारी रखते हुए विदुषी अनिता सेन अब प्रस्तुत करती है ठुमरी, बोल अब मोरी लागी लगन। दैट वॉज दादरा। यू आर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय विदुषी अनिता सेन। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय उस्ताद हिदायत खान एंड ऑन सारंगी बाय लियाकत अली खान। कंटिन्यूइंग हर लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल, विदुषी अनिता सेन नाउ प्रेजेंट्स ठुमरी, बोल अब मोरी लागी लगन।

ये थी ठुमरी। विदुषी अनिता सेन अब प्रस्तुत करती है दादरा। बोल है, निंदिया लागी मैं सोई रही गुइया। दैट वॉज ठुमरी। कंक्लूडिंग हर रिसाइटल, विदुषी अनिता सेन नाउ प्रेजेंट दादरा। बोल, निंदिया लागी मैं सोई रही गुइया।

कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा और सारंगी पर संगति कर रहे थे जाफर परवेज खान। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज दादरा। यू वेर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय विदुषी अनिता सेन। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा and on sarangi by Jafar Parvez Khan. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है शरण रानी का सरोद पर बजाया राग दरबारी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a sarod recital by Sharan Rani. She first presents Rag Darbari, in which you hear a composition set to Vilambit and Drut Teen Tal.

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर जाया राग दरबारी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए चंद्रनंदन, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग दरबारी। कंटिन्यूइंग विथ हर रिसाइटल, शरण रानी नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रनंदन, इन विच यू विल हियर अ कंपोजिशन सेट टू विलंबित एंड द्रुत तीन ताल।

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजाया राग चंद्रनंदन सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग चंद्रनंदन एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय शरण रानी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो चैनल रागम, 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं तबला वादन। इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विनायक फाटक के तबला वादन से। विनायक फाटक कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं ताल मत्त ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रसन्न राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। सुनते हैं विनायक फाटक का तबला वादन ताल मत्त ताल।

धा धागे धीना गीना तीना तकिट धकिट धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना

ಧಾಗ್ ಧಾನ್ ತದಗ

श्रोताओं, हम सुन रहे थे ताल मत्त ताल। कलाकार थे विनायक फाटक। आपके साथ हारमोनियम पर थे प्रसन्न राजवाड़े और वायलिन पर थे सुरेश गुजर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन। आपने प्रस्तुत किया है ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर है फारूक लतीफ खान। ताल तीन ताल, कलाकार अरविंद कुमार आजाद।

राम सहाय जी की रचना सुनिए, धा त्रक धन धा। धा धरक चिक धरक चिक धरा त्रगन धर धर धर कट तक तुलना कट तक धा करन तना कट चिक नाधर कट चिक धा कत धिन्ना कत धिन्ना कत धा घड़ान धा घड़ान तकित धिकित तक घड़ान कला कला धरक चिक धरक चिक धरक चिक धरक चिक धरक चिक धरक चिक धा कत धिन्ना कत धिन्ना कत धा तड़ान धान कत

श्रोताओं, हम सुन रहे थे अरविंद कुमार आजाद का तबले पर बजाया हुआ ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर थे फारूक लतीफ खान। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विहाग में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं पुष्पेन दे. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तुषार दत्ता. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विहाग में सरोद वादन, कलाकार पुष्पेन दे.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sarod recital in rag bihag. Our artist this evening is Pushpen De. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta. Listen now to a sarod recital in the rag bihag. Our artist Pushpen De.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं राग मल्हार पर चर्चा। आकाशवाणी लखनऊ के टेप संग्रहालय से प्राप्त कुछ दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स आपको सुनवा रहे हैं। राग मल्हार पर चर्चा कर रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, जिनसे बातचीत कर रही हैं मीनू खरे।
2: मन भावन पावस को पाकर प्रकृति निहाल ओटी, उसी की प्रतीक्षा तो वह करती थी ना, इतनी आतुरता से, इतनी विकलता से। पावस आया और उसने अपनी रिमझिम फुहार से सबको प्रफुल्लित किया। पुलकित हो उठी प्रकृति और उसकी वह पुलक मुखरित हुई पपीहे की पुकार में और झिंगुरों की झनकार में। प्रकृति का प्रभाव भला प्राणी पर कैसे न पड़ता। पावस के नशीले माहौल ने उसे भी प्रभावित किया और उसके कंठ से सहज ही फूट पड़ी रस भरी कजरी, भाव भरा विरहा और मद भरा मल्हार। मल्हार के विभिन्न रूपों को स्वर के माध्यम से चित्रित करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में सुप्रसिद्ध गायक श्री गणेश प्रसाद मिश्र उपस्थित हैं। मिश्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज आप मल्हार के विभिन्न रूपों में से किस रूप को सबसे पहले इस कार्यक्रम में चित्रित करने जा रहे हैं?
3: हम सर्वप्रथम मेघ मल्हार को लेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में मेघ नाम जो है ये प्राचीन काल से ही चला रहा है और जहाँ तक हमें ज्ञान है कि मेघ और मल्हार का दोनों का एक समन्वय है आपस में। और उसके बाद जितने मल्हार बने वो या तो ग्रंथ के ऊपर हैं या लोगों ने निर्माण किया, जैसे मियां मल्हार ये तानसेन जी ने बनाया, चंचल सस मल्हार एक हमारे बहुत अच्छे विद्वान हो गए हैं चंचल सस जी, ये उनके नाम पर है। सुर मल्हार भी ऐसे ही सुर जी के नाम पर, सूरदास जी के नाम पर है। रामदासी मल्हार भी एक बहुत अच्छे गायक थे, उनके नाम पर है। तो भिन्न भिन्न नामों के आधार पर मल्हारों का लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने बनाया अपना नाम दे दिया। कुछ मल्हार ऐसे हुए जो कि बाद में एक दूसरे रागों को मिला करके मल्हार का पुट दिया गया, जैसे गौड़ मल्हार, उसमें गौड़ और मल्हार दोनों का समन्वय।
2: नट मल्हार भी उनमें से एक,
3: नट मल्हार भी उसमें से एक है, नट और मल्हार को मिला दिया। जयंत मल्हार एक है, उसमें जयजवंती को मल्हार को मिला दिया। इस तरीके से एक दूसरे रागों के साथ में मल्हार का को मिला करके मल्हार बना।
2: इसका अर्थ ये हुआ कि मेघ मल्हार हमारे आदि ग्रंथों में चित्रित मल्हारों में से एक है। तो आप थोड़ा सा इस राग के बारे में बताएं।
3: हमारा जो मल्हार है वो सारंग से बिल्कुल मिला जुला है। सारंग में ऋषभ का प्रयोग थोड़ा खड़ा लगता है और मल्हार में जो लगता है वो ऋषभ घूमता हुआ लगता है और मध्यम पर जाकर प्रकाश डालता है। रे रे मे रे रे प, ये पूर्वांग का और नी मापा का प्रयोग उत्तरांग का, ये मल्हार को बतलाता है। तो मेघ मल्हार में गंधार धैवत वर्जित है और कोमल निषाद बाहुल्य है, जबकि शुद्ध निषाद का भी प्रयोग है लेकिन वो अल्प है।
2: तो आपसे अनुरोध है कि आप मेघ मल्हार से हमारे श्रोताओं को रस भी भोर करें।
3: जी हाँ, इसमें हम दो बंदिश आपको सुना रहे हैं, एक विलंबित और एक साधारा टाइप का है।

0: राग मेघ मल्हार के स्वरों में निबद्ध, बादलों की धमक और बिजली के चमक का रस स्वादन अभी हमारे श्रोताओं ने किया। श्री गणेश प्रसाद मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग चंचल सस मल्हार। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें।
1: ये हमारे कलाकार महान विद्वान चंचल सस जी ने अपना उपनाम रख करके इस मल्हार का निर्माण किया। जैसे चंचल सस मल्हार, सरजू जी का मल्हार, मीराबाई का मल्हार, इस तरीके से लोगों ने अपना नाम रख करके उसमें मल्हार के प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने निर्माण की। चंचल सस मल्हार में जो है ये मेघ मल्हार का ही सभी स्वर है और बीच में कांधड़े अंग का गामा रेशा का प्रयोग होता है। ये दोनों को मिश्रित करके उन्होंने बनाया, क्योंकि काफी थार के जितने भी राग हैं, मल्हार प्रकार, सारंग प्रकार, कांधड़ा प्रकार, ये तीनों एक सगे संबंधी भाई हैं तीनों, और एक दूसरे में मिश्रित होकर के चलते हैं। जैसे मेघ मल्हार हमने सुनाया तो ये वृंदावनी सारंग से मिलता जुलता है। फर्क ये है कि इसके सब स्वर मेघ मल्हार के घुमावदार लगते हैं और सारंग के स्वर खड़े लगते हैं। दूसरे मध्यम बार बार सामने मल्हार में आता है। उसी तरीके से ये चंचल सस मल्हार में भी गंधार वक्र है और कोमल गंधार गमर, इस तरीके का प्रयोग है, और बीच में मध्यम जो है वो सामने आता है। इसके एक छोटी सी रचना हम सुना रहे हैं, छोटे ख्याल का।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र से राग मेघ मल्हार और राग चंचल सस मल्हार पर चर्चा, जिनसे बातचीत की थी मीनू खरे ने। आपके साथ सारंगी पर संगत की थी भगवान दास मिश्र ने और तबले पर अकबर हुसैन खान ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पंडित एस एन रतनजनकर से राग सुर मल्हार।
1: सुर मल्हार लेंगे, इसमें अवरोह में किंचित धैवत लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सोरठ देश की छाया इस राग में आती है। यह इसकी विशेष पहचान है।

इस प्रकार कुछ धैवत इसके अवरोह में लगती है। मध्यमवादी है और मारे की मीर भी है, रिपा संगति है, जो मलार के सवांग हैं वो इसमें भी आते हैं, कुछ गमकों का प्रयोग भी होता है इसमें। यह राग कहते हैं सूरदास जी ने बनाया, इसी के लिए उसका नाम सुरमाल। पर ये सूरदास जी कौन से, कई सूरदास जी हो गए हैं, तो महाकवि सूरदास जी ही ये थे जिनका बनाया हुआ ये राग है, या कोई और सूरदास थे, ये ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में निश्चित कहा नहीं जा सकता है किस सूरदास का बनाया हुआ ये राग है। अस्तु, अब इसके प्रथम कुछ स्वर विस्तार सरगम में और तत्पश्चात कुछ आलाप नेचे रीरी नाना इसमें करके, उसके बाद एक बड़ा ख्याल, उसका बड़ा मतलब विलंबित ख्याल, और दूसरा एक मध्यलय का ख्याल सुनाएंगे।

问你咋的？热暖，热暖，热暖，热暖，你咋玩？

अभी आप सुन रहे थे पंडित एस एन रतनजनकर से राग सूर मल्हार। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा. बोल हैं गोरी बन के नैनों से चला जादुआ. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी. द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा. द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी. दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वर्ल्ड रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखे हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट सिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अकरम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।
1: जय जय।

दी आ कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावड़ीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।

माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निळोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DDH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।